0: हैप्पी हैप्पी फ्राइडे क्राइस्टचर्च, कैसे हैं आप सभी का हम स्वागत करना चाहते हैं रेडियो केजे के साथ आप जुड़ चुके हैं। जी हाँ, एक और फ्राइडे और एक और फ्राइडे रंगत के साथ साथ हम कुछ नए नए म्यूजिक ये लेकर आ चुके हैं। कुछ लोग हमारे साथ उधर फेसबुक लाइव के माध्यम से भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे जो आर्डन लिसनर्स है, द फेवरेट रेडियो स्टेशन ऑफ क्राइस्टचर्च मेन्स प्रिजन, जितने नीरज जी और आपके साथ आपके जितने दोस्त हमें उधर क्राइस्टचर्च मेन प्रिजन से सुन रहे हैं, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं। कुछ लोग हमारे साथ फेसबुक लाइव में भी जुड़े हैं। जीबीजी, आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट ओवर देयर।
1: हाँ, पता नहीं आज हमारे फोन में नहीं दिखाई दे रहा है और आपके फोन में दिखाई दे रहा है।
0: आपका फोन भी।
1: मुस्कान जी, कैसे हैं आप? आपका भी स्वागत करना चाहते हैं। चलो थोड़ा सा हंस लो, क्योंकि फ्राइडे है, वीकेंड है और हमें आपकी मुस्कुराहट बहुत पसंद है। मुस्कान जी, सो मुस्कुराते रहिए।
0: जी हाँ, इतना खूबसूरत चेहरा हो तो क्यों ना मुस्कुराना।
1: साहिल शर्मा जी, आपका भी हम स्वागत करना चाहते हैं रेडियो केजे लोकल पर। रोशनी गुप्ता जी,
0: रोशनी गुप्ता से पूछना है, रोशनी गुप्ता डिड जीबी और हमने आपको कुछ बोला है? आजकल आप आकर ऐसे ही चली जाती है, ना हाय ना हेलो कुछ बोला होगा तो मैसेज कर देना। जिंदगी बहुत छोटी होती है और छोटी सी जिंदगी में सब कुछ दिल से निकाल देना।
1: नहीं यार, रोशनी जी से तो हमने कभी कुछ नहीं कहा। इनफैक्ट शी वाज पार्ट ऑफ स्पेशल मोमेंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, सो आई डोंट थिंक सो। बट हां, मंगत हैरी जी, आप हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से जुड़ गए हैं, राइट?
0: वैसे भी आप लोगों को कुछ बोलती नहीं हो, लोग क्या सुन लेते मुझे ये नहीं पता।
1: क्यों, क्या हुआ?
0: बिन बोले ही लोग आपके पास
1: सुन लेते हैं। यार, आई नो, पता नहीं कैसे। लिशा, हाउ लिशा ही है ना? हाँ, लिशा निजीश, वेलकम टू रेडियो केजे लोकल, हाउ आर यू? सो टॉकिंग अबाउट आज का फ्राइडे शो एंड इंट्रोड्यूसिंग आवर न्यूएस्ट title sponsor. Guys, join us in welcoming our newest title sponsor, Jaggi Bhopal Aristo Real Estate. The big thing and the great thing about it is, agar aap ghar bechna chahte hain ya khareedna chahte hain, with Jaggi Bhopal Aristo Real Estate, they offer great results to sellers with zero upfront cost and fair low flat fee commission. साथ ही साथ हमारे supporting sponsors को welcome करना चाहते हैं।
0: इसके साथ साथ जगी के बारे में ये भी बता दे, before we forget, it's not only in Christchurch, South Island से आप कहीं से भी सुन रहे हैं, गो से जो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, याद रखना, he can sell the house all the way over there. So next time if you're planning to sell and buy a house, Jaggi is the name.
1: जी हाँ, moving on to our supporting sponsor and one of our newest sponsor, thank you so much, New Zealand Clinical Mastery to come on board. Now New Zealand Clinical Mastery के बारे में क्या बोले? If you plan to have a career of nursing in New Zealand, then this is the place that you need to begin. If you're dreaming to be a successful nurse in New Zealand, your journey to OSCE success starts with New Zealand Clinical Mastery. So join them.
0: मंगत भाई कैसे हैं आपका? मंगत भाई, आप हम तो भाई भाई है ना, सारे बात को वो जो पिछले दो दिन में जो बात हुई थी उसके बारे में भूल जाओ ना, आज नहीं करते, किसी और दिन करेंगे, ठीक है?
1: कौन सी बात,
0: कुछ बात
1: क्यों
0: मजाक कर रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं, हमारे बाकी जो स्पॉन्सर्स हैं जो हमारे साथ यू नो हमेशा रहते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, इनको भी हम याद कर लेते हैं। इको ट्रेवल्स, यस, आपका अगला ट्रिप कहाँ है? वेयर आर यू गोइंग? व्हाट्स द नेक्स्ट कंट्री यू आर गोइंग? इको ट्रेवल्स, जरूर आप ये नाम याद रखिए, दे विल गाइड यू इन द राइट वे, दे विल गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन, कहाँ जाना है, आपका काम आपके लिए आसान कर देंगे। इसके साथ साथ री इमिग्रेशन, देव कंसारा जी,

0: जी बड़े एक्सरसाइज कर रहे हो आजकल, क्या बात है. जी हाँ, और देव जी को भी हम याद कर लेते हैं. याद रखने, अगर आपको भी, इफ यू नीड समबडी हु हैज टू लुक आफ्टर, जहाँ पर आपके कोई फैमिली यहाँ आना चाहता है, या यू नीड टू गो टू अ कंट्री जहाँ के लिए आपको वीजा लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, रीमिग्रेशन देव खंसारा इज द नेम टू गो टू.
1: जी हाँ, साथ ही साथ अगर आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए, आपको एकदम परफेक्ट क्लीन स्किन चाहिए, तो यू नीड टू गो टू टच एंड ग्लो जस्ट जी, जिन्होंने अभी नया वेन्यू इनका शुरू किया है.
0: दे आर गोइंग टू अ न्यू प्लेस और ये स्टिल इन होल्सवेल, सो गो देयर. और क्या है द गुड थिंग इज कि हफ्ते में दो बार, क्योंकि हमारे संडे शो में भी है, तो टू टाइम्स हम इनका जो यू नो प्रमोशन है या जो ये काम करते हैं, वी शेयर इट. सो मेक श्योर यू चेक इट आउट. बाबू ब्रदर, हाउ आर यू? विकी का विकी विकी ब्लॉग,
1: एमसी केयर न्यूजीलैंड, मनीष कम्युनिटी केयर न्यूजीलैंड. अगर आपके घर पे कोई बुजुर्ग है या आपको कोई सपोर्ट चाहिए, आपको चाहे शॉपिंग का हो, ग्रोसरी का हो, उनके केयर का हो, तो ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा एक इंस्टीट्यूशन विच इज कॉल्ड एस एमसी केयर न्यूजीलैंड, आपको कॉन्टैक्ट करना है इन्हें.
0: जी हाँ बिल्कुल. और इसके साथ साथ नैथन जी, नैथन मिगलानी जी, कैसे हैं आप? आपको भी हम याद कर लेते हैं. इस वीकेंड याद रखिए, इस वीकेंड ये जो फर्स्ट होम बायर्स के लिए ये एक सेमिनार कर रहे हैं विच इज एब्सोल्युटली फ्री, बस आपको अपना रजिस्टर कराना है. सो मेक श्योर, अगर आपने अभी भी रजिस्टर नहीं करा, इफ यू प्लानिंग टू बाय अ हाउस, यस, ये नैथन मिगलानी और स्क्विरल साउथ आइलैंड, ये नाम जरूर याद रखिए.
1: रशीदा चंद जी, आपका भी हम स्वागत करना चाहते हैं. राम राम आपको भी रेडियो के जे लोकल की तरफ से.
0: रशीदा जी के बेटे का हैप्पी बर्थडे.
1: वाओ, हैप्पी बर्थडे. तो हमें रशीदा जी के बेटे को हैप्पी बर्थडे एट सम पॉइंट विश करना ही चाहिए, राइट?
0: एक बार पूरी फैमिली जॉइन हो जाए ना, सबको साथ में विश करेंगे.
1: जी, साथ ही साथ द नेक्स्ट वन इज नॉट अननोन नेम टू क्राइस्टचर्च व्हिच इज फैनफेयर इवेंट प्लानर्स. आज पता नहीं हमारा हो रहा है.
0: अननोन फेस.
1: Not an unknown face. Oh. Yeah, not an unknown face to Christchurch. कुछ गलत कहा हमने?
0: मुझे लगा आपने कहा not an unknown face.
1: ना, तो अगर आपका कोई इवेंट हो, बर्थडे, शादी, एंगेजमेंट, या आप हमारी तरह रामायण लेकर आ रहे हो, तो एक डेकोरेटिंग पार्टनर तो आपको चाहिए ही चाहिए. सो कॉन्टेक्ट फैनफेयर इवेंट प्लानर्स फॉर योर नेक्स्ट इवेंट.
0: अभी तो ये मैडम जी लेफ्ट राइट सेंटर सारे जगह पर हर एक दूसरा इवेंट इनके द्वारा ही किया जा रहा है. फैनफेयर इवेंट प्लानर्स, नाम जरूर याद रखिए. इसके साथ आगे बढ़ते हैं. शिवम अरोरा जी, शिवम जी कैसे हैं? एनजेड इंश्योरेंस, यस, इंश्योरेंस होना बहुत ही जरूरी है. तो अगर इंश्योरेंस के लिए आप तलाश कर रहे हैं, एक अच्छे एडवाइजर के तलाश में, शिवम अरोरा नाम याद रखिए. इसके साथ साथ स्कोरल साउथ आइलैंड आरी जी हमारे साथ, आर्य बहन जी हमारे साथ स्टूडियोज में हमेशा शामिल हो जाते हैं. तो इधर आप यू कैन कॉन्टेक्ट नैथन, आर्य और इंश्योरेंस के लिए डेफिनेटली शिवम जी को.
1: साथ ही साथ हमारी जान हमारी शान हमारे काफी अच्छे दोस्त एंड वन ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफर्स एंड वीडियोग्राफर्स, जो बिल्कुल बायस नहीं होते हैं फोटोज लेने में. अगर कोई इवेंट हो तो वो मेक श्योर करते हैं.
0: बायस फोटोग्राफर्स को भी मिलते हैं.
1: हम बिल्कुल बायस फोटोग्राफर्स को मिलते हैं. हमने फोटोग्राफर्स स्पेशली क्राइस्टचर्च में ऐसे देखे हैं जो एक इवेंट में आकर सिर्फ कुछ लोगों के फोटोज लेते हैं और कुछ लोगों के नहीं लेते हैं. ये आप भी अच्छे से जानते हो
0: कि
1: I know. But anyways, PP Production एक ऐसे फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर है जो आपके इवेंट्स को काफी अच्छी तरीके से कैप्चर करेंगे एंड आपके फोटोज आपको डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे. सो डू कॉन्टेक्ट PP Production फॉर योर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी नीड्स.
0: इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं. यूनिक इतनी कलेक्शन जी, यस, यूनिक इतनी कलेक्शन. आपको भी यूनिक आउटफिट की तलाश में है तो, और एथनिक वेयर की तलाश में, तो ये नाम जरूर याद रखिए. यूनिक इतनी कलेक्शन होल्सवेल में है. और इनके जसपाल जी आप अगर सुन रहे हैं, या मनप्रीत जी कैसे हैं? आपसे तो हमेशा स्कूल में मुलाकात हो ही जाती है, तो आप दोनों का हम स्वागत करना चाहते हैं.
1: चलो आगे बढ़ते हैं. ग्रोसरी वीकेंड आ गया है. आप लोगों का ग्रोसरी शॉपिंग हुआ है या नहीं हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो जल्दी से अपना ग्रोसरी शॉपिंग कर लीजिए. सैटरडे एंड संडे काफी लोग आते हैं तो हाई हेलो भी हो जाएगा ग्लोबल फ्रेश में. आई थिंक हम भी शायद इस वीकेंड ग्लोबल फ्रेश में जाने वाले हैं.
0: वी आर गोइंग देयर दिस वीकेंड और कुछ वीडियोस वहां से भी करेंगे. अभी सामी नमस्कारम टू यू. नमस्कार मिस्टर, तुम राइट है ना?
1: थैंक यू रशीदा चंद जी, यू गाइज आर डूइंग अ गुड जॉब, वेल डन. थैंक यू सो मच रशीदा चंद जी फॉर योर सपोर्ट. मूविंग ऑन, चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्पॉन्सर विच इज, अगर हमने फैनफेयर के बारे में बात कर लिया, अगर आप इवेंट्स कर रहे हैं और आपको एक डीजे चाहिए, तो आपको कॉन्टेक्ट करना है डीजे गिडियन फॉर योर साउंड एंड लाइट्स.
0: या डेफिनेटली, यस, बहुत ही अच्छे डीजे हैं जिनके पास काफी वाइड नॉलेज है म्यूजिक को लेकर, डीजे गिडियन. इसके साथ साथ करंट कॉनिक इलेक्ट्रिकल जोन जी, भाई अगर आप भी अपने घर पे कुछ लाइट फिट कराना चाहते हैं, ऑटोमेटिक गेट, और अभी तो सभी लोग हाइब्रिड यानी इलेक्ट्रिक कार ले रहे, तो इलेक्ट्रिक कार का जो चार्जिंग पोर्ट होता है, इसके लिए ये नाम जरूर याद रखिए, करंट कनेक्ट इलेक्ट्रिकल. और लास्ट बट नॉट लीस्ट

0: नीले धमलिया जी फ्रॉम SBG अकाउंटिंग, एक अच्छे अकाउंटेंट के तलाश में हैं, तो SBG अकाउंटिंग ये नाम जरूर याद रखिए जी, कुछ मैसेज आए।
1: जी हाँ, वंस अगेन हमारे फ्राइडे शो के जो टाइटल स्पॉन्सर है वो है जग्गी भोपाल फ्रॉम अरिस्टो रियल एस्टेट, अगर जो आपको ऑफर करते हैं ग्रेट रिजल्ट्स ऑन योर सेल विद जीरो अपफ्रंट कॉस्ट एंड फेयर लो फ्लैट फी कमीशन, तो आपको कांटेक्ट करना है जग्गी जी फ्रॉम अरिस्टो। एंड वी हैड अ रियली गुड चांस टू मीट हिम लास्ट वीक,
0: वी मेट हिम लास्ट वीक एंड वेरी नॉलेजेबल गाय। देखो अगर इफ आई एम हैंडिंग ओवर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स ऑफ वोट का जो मेरा घर है किसी के हाथ में, सो आई वांटेड टू बी इन अ सेफ हैंड, और ये गुड थिंग अबाउट जग्गी इज नॉट ओनली इन क्राइस्टचर्च बट साउथ आइलैंड में कहीं पर भी, सो दिस इज द नेम टू रिमेंबर। जी भी चले चले हमारे साथ कुछ लोग फेसबुक लाइव पे जुड़े हैं।
1: अभी सामी जी नमस्कार आपको भी, हरप्रीत कौर जी कैसे हैं आप, आपको भी जब स्टूडियो में आए थे काफी अच्छा लगा, एंड आपके बारे में हम ज्यादा संडे के शो में बात करेंगे। शालिन हेलो हेलो ऑल द वे फ्रॉम ऑकलैंड, हाउ आर यू। मुस्कान जी कह रही है आई एग्री विद जीबी रिगार्डिंग फोटोग्राफर्स, दे आर नॉट प्रोफेशनल एट ऑल। आई सेड सम डेफिनेटली सम फोटोग्राफर्स आर नॉट प्रोफेशनल एट ऑल।
0: सरस जी हमारे साथ है, सरस जी व्हाट्स कुकिंग इन हमारे क्राइस्टचर्च के बहुत ही नोन फेस जीबी जी, डॉक्टर जी हमारे साथ सामने,
1: सुनीता गौतम जी भी आ गए हैं हमारे साथ, सो वेलकम सुनीता जी, कैसे हैं आप। यू कैन ड्रॉप अ मैसेज अबाउट योर मेंस प्रोस्टेट कैंसर अवेयरनेस वन एज वेल, वो डेट एक और बार सुनीता जी अगर आप सुन रहे हैं यहां पर डाल दीजिए, सो वी कैन लेट ऑल आवर लिसनर्स नो अबाउट द अवेयरनेस एज वेल, एंड यू गाइस आर डूइंग अ ग्रेट जॉब।
0: यस डेफिनेटली एग्री, और जितने भी हमारे कम्युनिटी में ये लोग अच्छे काम कर रहे हैं इसको तो इनको हम कैसे भूल सकते हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद फॉर ऑल योर हार्ड वर्क। चले जबकि हमारे साथ आज स्टूडियोज में जैसे हमने कहा कि वी हैव गॉट फ्यू गेस्ट जिनसे हम बहुत ही जल्द रूबरू होने वाले, we'll be talking about them too. But जी से पहले आपका week, I didn't ask you, how was your week?
1: It was okay actually, it was quite peaceful this week.
0: And क्यों बच्चे घर पे नहीं थे?
1: नहीं, बच्चों को तो आप संभालते हो, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, but also Ramayan is progressing and it's looking good, so feel good about it. जिन लोगों ने tickets नहीं लिया है वो जरूर खरीद लेना, and yeah, it's all going well. आपका कैसा था week?
0: बहुत अच्छा गया क्योंकि बच्चे घर पे
1: थे. I know, Christian loves his time with kids and I love my time out.
0: Okay. Yeah. Thanks for saying that on air. We'll save it for हमारे बच्चों के 21st birthday के लिए। मुनीश भाटिया जी हमारे साथ शामिल हो चुके हैं, भाई जी
1: अभी
0: दो दिन पहले इनका भी birthday था ना?
1: Yeah, मुनीश जी आपको happy वाला birthday, कैसे है आप, आपकी आपकी
0: अंकिता
1: बीवी को कैसे कैसे बोलते हैं? बेटर हाफ नहीं, हिंदुस्तानी, हिंदी में बोलिए जरा,
0: आपकी धर्मपत्नी
1: नहीं अर्धांगिनी, हम वो वर्ड यूज कर, आपकी अर्धांगिनी ने आपके लिए इतना प्यारा पोस्ट डाला था बर्थडे का, वैसे अर्धांगिनी जी नहीं, हाँ मनीष जी आप काफी लकी है वैसे, हैप्पी बर्थडे आपको।
0: जी हाँ, तो अभी हमारे साथ आज कुछ लोग अपना जन्मदिन आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ बिलेटेड बर्थडे वाले हैं, इन सबको हम बारी बारी से याद करेंगे। वी विल आल्सो डू अ बर्थडे सॉन्ग फॉर यू गाइस, तो डू नॉट गो। रशिदा जी एक बार आप और आपके सारे फैमिलीज हमारे साथ शामिल हो जाए, सो डू लेट अस नो, वी विल गिव अ शाउट आउट टू योर सन टुडे जिनका आज हैप्पी बर्थडे। जी चले हमारे साथ कुछ गेस्ट है, इनको हम स्टूडियोज में लेकर आते गाइस, जैसे हमने कहा कि वी हैव गॉट सम गेस्ट, वी विल गो इनटू अ म्यूजिक। एक बार फिर जितने लोग हमारे साथ उधर फेसबुक लाइव के माध्यम से सुन रहे हैं या कहीं से भी आप सुन रहे हैं, आप सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, और हर फ्राइडे की तरह आज भी हम सॉन्ग्स लेकर आए हैं, कुछ आपको सुनाएंगे कुछ आप हमें सुनाना। इसके साथ साथ अगर इफ यू वांट टू हैव अ रिक्वेस्ट फॉर द सॉन्ग डेफिनेटली लेट अस नो, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये काम है कि हम आप लोगों के लिए जो सॉन्ग का रिक्वेस्ट है ये बिल्कुल फुलफिल करेंगे। चले इस गीत में हम आप सभी को याद कर लेते हैं। यू लिस्टिंग टू रेडियो KJ ओनली ऑन
1: प्लेन्स मीडिया 96.9।

0: जी हाँ बिल्कुल, तुमसे यस ये गीत को आप सुन रहे थे। आप सभी कैसे हैं? तेरी बातों में उलझा जिया। वेल गाइस, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि जब हम रेडियो केजे का साथ होता है तो वी मेक श्योर कि क्राइसिस में जो भी इवेंट हो रहा है ये इन्फॉर्मेशन हम आप तक लेकर आ जाए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अगर हम आपको नहीं देंगे तो आपको कैसा पता चलेगा। हमेशा लोग हमसे कहीं भी मिलते हैं एक ही सवाल होता है, यार क्राइसिस में कुछ होता नहीं है, बहुत कुछ हो रहा है भाई, बस आप लोगों को इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है और हमें इनके साथ मिलकर आपको इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है। चलिए आपसे शुरुआत करते हैं। वैसे अननोन फेस, आप काफ़ी जगह पर छाए हुए हो, पर जो लोग आपको आज पहली बार देख रहे हैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए आपका।
1: नमस्ते, मेरा नाम सुश्रुति अधिकारी है एंड मैं क्राइस्टचर्च में ऑलमोस्ट 10 साल से हूँ और हम यहाँ पे आज कुछ इवेंट के बारे में बात करने आए हैं। तो हम दूसरे लोगों से सुनते हैं कि क्या बोलते हैं।
2: नमस्ते, हरे कृष्णा, मैं पद्मा गौरांगी।
0: हरे कृष्णा,
2: वेरी नाइस टू कम हियर। So we are here for talking about Durga Puja, which is our delighted, joyful celebration, you know, one of the delighted festival for especially Bengalis. So most thing I like about Durga Puja is buying new sarees.
0: that I agree with you. देखो हमारे यहाँ पर कहते हैं फिजी में ये माना जाता है और आप किसी भी धर्म में चले जाओ कहते हैं, और गीता में तो खास तौर पर इसके बारे में लिखा है कि भगवान अपने पास किसी को बुलाने के लिए, चाहे फिर वो दुर्गा मैया हो, हमारे रामायण वाले राम जी हो, वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। क्योंकि अभी ये क्या है, 2026 में भी सराउंडेड बाय सो मेनी डिस्टर्बेंस, सो मेनी डिस्ट्रक्शन। सो इसमें क्या होता है कि चलो आई विल कॉल यू, मैं अपने घर पे आपको बुलाऊंगी, बहाना क्या ढूंढू, चलो अच्छा नए साड़ी के बहाना बुलाती हूँ, आएंगे तो मेरे दर्शन करने के लिए। जैसे हमने कहा वो तो बहाना है, वैसे आप लोग भक्ति के साथ जाते हो, सो लुकिंग फॉरवर्ड to seeing you guys in a lovely outfit. How are you?
3: I am good.
0: काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई, कहाँ छुपे थे आप?
3: बस
0: आप तो ईद के चांद बन गए।
3: बस रोजमर्रा की जिंदगी में फंसे हुए हैं। It's just an excuse to kind of just get together, meet everyone, and just have a good time together. So also, hi, I am Sophia, and I have been in Christchurch for over 9 years now. And I've been a part of the community and the group since its inception. So yeah, hello.
0: Oh, Sofia. आपको पता, I think Jordan या किसी country का capital है ना Sofia?
3: Yes, Bulgaria का.
0: Bulgaria का, वाह, आप वहीं से नाम मिला?
3: मेरे father English teacher हैं and he liked the name Sophia because it means wisdom.
0: Yes.
3: So I guess I'm trying to achieve that.
0: growing up I was yes ये नाम मैं बहुत, क्योंकि my sister in law her name is also Sophia. और Fiji का एक बहुत ही बड़ा shipping company है and one of the ships was named after one of the daughters whose name was Sophia.
3: That's nice.
0: Okay, ma'am, how are you? अब mic इनके madam जी के पास थोड़ा सा वो कर दीजिए, कैसे हैं?
4: नमस्कार, अमी मुक्ता. I'm going to explain with Bangla. So
0: yeah, go for it.
4: I'm here in New Zealand nearly 10 years. Like I'm 10 বছর ধরে এখানে আছি। তো আমি বাঙালিরা মাল্টিকালচারাল ক্রাইস্টচার্চের গ্রুপের একজন খুবই কাছের একজন মানুষ। তো আমরা খুবই ভালোভাবে এই পূজাটা অনুষ্ঠানটা উদযাপন করি সবাই একসাথে। তো দিস ইজ মাই ফার্স্ট টাইম, সো দ্যাটস আই এম লিটল বিট লাইক শাই হিয়ার। সো
0: নাও ইউ আর ডুইং গ্রেট,
5: ইউ আর ডুইং
0: গ্রেট।
4: So yes, this is me, the part of the Bengali multicultural cultures.
0: Okay, so ye ta icebreaker hamare liye, kyunki we just get a quick introduction.

0: अभी दिल ओपन अप, आप दोनों पीछे शर्मा कर क्यों बैठे हैं? आप आ जाइए सामने, थोड़ा आपसे भी सुन लेते हैं, वैसे आप हमेशा आते हैं, आप लोगों से बात होती है।
1: थैंक यू, नमस्ते। मेरा नाम देव है और मैं बंगालियाना मल्टी कल्चरल क्राइस्ट चर्च का एक मेंबर हूँ, जैसे हम सब लोग यहाँ हैं। और आज हम लोग यहाँ पे दुर्गा पूजा के बारे में बात करने आए हैं, और क्योंकि सब लोग कह रहे थे कि हम कितने दिन न्यूजीलैंड में हैं, मैं यहाँ पे 13 साल से हूँ, तो इन सब में से ज़्यादा सीनियर, यस मैं सीनियर मोस्ट, लेकिन हाँ, तो हम यहाँ पे दुर्गा पूजा के लिए सबको इनवाइट करने के लिए आए हैं, एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर टुडे।
0: आपने वो सेंटेंस, यू मिस अ सेंटेंस, आपने आपको बोलना था ना कि आई नॉट थैंक माई वाइफ फॉर चूजिंग माई आउटफिट फॉर टुडे।
1: मैं एक्चुअली काम पे आया था, मेरी वाइफ ने बोला देव आई एम रनिंग लेट, आई डोंट केयर व्हाट यू आर डूइंग, सी मी हियर, और मैं भाग भाग के आ गया।
0: ओके, आई थॉट सिर्फ हमारे घर पे ऐसे बात होती है, गुड टू नो, इट्स अ यूनिवर्सल थिंग। शुभोजीत जी, कैसे हैं आप?
2: मैं अच्छा हूँ।
0: हाँ, गुड टू सी यू।
2: नमस्ते, मेरा नाम शुभो है। तो हम लोग एक साथ आए हैं आज, हमारे हम लोग दुर्गा पूजा करते हैं। सो दुर्गा पूजा दिस इस साल 17 अक्टूबर होगा टेम्पलटन कमेंट्री हॉल में, तो इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं और सबको, आप लोगों को इनवाइट करने के लिए हम लोग आ जाए हैं।
3: थैंक यू सुबो जी, आपको तो कुछ सालों से हम जानते हैं, आपके साथ हमने काम भी किया है। आप लोगों के लिए एक मैसेज है सुनीता
0: गौतम, आपके इतनी प्यारी खूबसूरत आवाज, कैसे हम अपने फ्रीक्वेंसी लिसनर्स को मिस कराए।
3: सुनीता गौतम जी से एक मैसेज है, कह रही है बंगालियाना मल्टीकल्चरल क्राइस्ट चर्च, कीप अप द ग्रेट वर्क, लुकिंग फॉरवर्ड टू द दुर्गा पूजा दिस ईयर, आपकी तरह हम भी, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। लॉरिन जूली मनी जी ने ज्वाइन किया, कह रहे नमस्कार फ्रेंड्स एंड से हाई टू एवरीवन फ्रॉम आसिया। पूजा, यहाँ पे कोई पूजा है?
0: हाँ, जो पूजा टीम लेके
3: आई है। अच्छा, नहीं उनका नाम पूजा है।
0: अच्छा, आपने बताया,
3: आपने पूजा कहा क्या अपना नाम?
4: आई आल्सो नोन एज पूजा एंड पद्मा बोथ।
3: तो लॉरिन जूली मनी जी ने आपके लिए मैसेज किया है कि से हाई टू पूजा फ्रॉम अस।
0: ओके लॉरिन जी, और जीवी जी, सुनीता जी का उससे ऊपर भी एक मैसेज है, डिड यू रीड दैट वन?
5: दैट वाज फॉर द प्रोस्टेट कैंसर।
0: यस, सो यू हैव डन दैट। ओके, और फियोना जी, वेलकम टू आवर शो, वेरी बहुत ही जल्द, यस डू नॉट गो एनीवे, आई नो वी हैव गॉट, हमारे साथ एक फैमिली ऑल द वे फ्रॉम गो क्लोज टू डनेडिन, दे हैव जॉइंड अस क्योंकि उनके बेटे का आज हैप्पी बर्थडे, और हियर एट केजे वी लव सेलिब्रेटिंग बर्थडे ऑन एयर, सो डू नॉट गो एनीवे, बहुत ही जल्द वी विल ऑल सिंग द बर्थडे सॉन्ग फॉर यू। ओके, मान लो मैं पहली बार आपको देख रहा हूँ या शो सुन रहा हूँ, एंड आई हैव नो आइडिया अबाउट दुर्गा पूजा, टेल मी, एनलाइटन मी, व्हाई शुड आई कम?
4: सो दुर्गा पूजा इज वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल बैक इन इंडिया, मोस्टली सेलिब्रेटेड इन अमंग बंगाली, नेपाल, बांग्लादेश। तो ये है गॉडेस दुर्गा का पूजा, एंड व्हाट द स्टोरीज go behind is that she comes home to her maternal home for 11 days and stay apne maike mein rehti hai 11 days, apne bachcho ko saath mein leke aati hai aur enjoy karti hai. To jab aati hai, what we do back home is we celebrate, jaise ki ghar pe ladki aayi hai wapas, hum celebrate karte hain, khate hain, naye naye kapde pehante hain, enjoy karte hain. So that's what the celebration is all about, gathering, you know, family members से मिलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, enjoy, you know, celebration.
0: We have a great time.
4: और फिर जब चली जाती है, literally we cry for her कि वो जा रही है अभी, जो 11वें दिन, 10वें दिन होती है, हम दशमी बोलते हैं, हम शीदुर खेला सब कुछ करते हैं, और फिर 11वें दिन में वो चली जाती है, we all cry for her कि next year फिर से आना, हम फिर से celebrate करते हैं, करेंगे, और हम एक साल फिर वेट करते हैं ताकि वो फिर से आए,
0: वापस आए। क्या बात है। हाँ, हम फिजी में भी दुर्गा पूजा वी सेलिब्रेटेड इन अ वेरी डिफरेंट वे, एंड जब हर साल दुर्गा पूजा में एक कीर्तन, साजे सिंह सवारी मैया, एक बहुत ही फेमस कीर्तन है जो सब साथ में मिलकर गाते हैं। पूजा जी, आपसे अब हम सवाल करते हैं, आपने मेंशन किया था कपड़े के बारे में शुरुआत में, तो अगर हमारा कोई वन ऑफ माय फ्रेंड, वैसे आई नो आउटफिट डजंट मैटर, पहली बार इस पूजा में आना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, व्हाट वुड यू सजेस्ट फॉर लेडी? लाइक आई सेड, वैसे तो आउटफिट वुड मैटर नहीं करेगा, बट जस्ट फॉर दैट पर्सन टू फील इंक्लूडेड, नॉट फील आउट ऑफ द प्लेस, व्हाट वुड यू सजेस्ट?
4: मोस्टली बंगाली थिंग्स, इट्स ऑल अबाउट साड़ीज, या सो it's not mandatory to wear only sarees, she can
0: come with. Is it any particular reason, is it white and

0: right? Is it?
1: Yeah, so we do wear, so we can wear, because it's 11 days, right?
0: जी
1: And people make it such a point that they buy saris for each and every day. And on the last day, Dashmi, where we do Sidur Khela, then we wear the white and red sari to
2: Combination with the
1: combination,
2: Sidur.
1: yeah, combination with the Sidur, yeah.
0: You got to watch Sidur Khela last year, na?
3: No,
0: You
3: I
0: still
3: did
0: haven't watched
3: not.
0: it?
3: No, so this year
0: This
3: mostly.
0: fingers crossed. Yeah, I think I've watched it a few times, but every year kuch aisa ho jata hai ki she
3: So
0: misses
3: we
0: out.
3: were there, हम लोग last year थे, लेकिन दूसरा event था तो
0: हाँ, we had to go.
3: पड़ा.
0: Yeah, हाँ. So Pooja ji, you are saying you know साड़ी and now उसमें और लड़कों का मैंने तो देखा है देव जी और सुभजीत जी तो यू नो हीरो हीरो हीरो बन कर आ जाते हैं ये पहचान में नहीं आते इस बार आप लोग अपना नेम टेक पढ़ना प्लीज वी डोंट नो कि यू नो ऑर्गेनाइजर्स जिन जिन जिन्होंने हमें इनवाइट किया चलो सोफिया जी आपके पास आते हैं अच्छा देखो पूजा इवेंट्स जब ऐसा जगह पे होता है लोग फैमिलीज के साथ आना चाहते हैं और कुछ इवेंट्स ऐसा होता है जहाँ पर हमारे फिजी में भी कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर बच्चों को कि नहीं क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है क्या ये इवेंट पूरा एंटायर फैमिली के लिए या स्पेसिफिक ग्रुप के लिए जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए
4: सो ये इवेंट पूरी फैमिली के लिए है राइट फ्रॉम किड्स टू आपके एल्डरली फैमिली मेंबर्स एवरीवन कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट बच्चों के लिए हम लोग फेस पेंटिंग बाउंसी कैसल फिर क्राफ्ट्स बलून मेकिंग और वो सब चीज़ रहता है सो दे विल बी वेरी वेल एंटरटेन्ड सो उनकी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी यू कैन हैव अ गुड टाइम making yourself a part of the puja hum log ke families this is the time when most of our families also kind of come together from india so they will also have elderly people if they are over here they will you will also have a group over there to interact with so yeah it's absolutely a family friendly event it's a free event so aisa nahi hai generally hum log dekhte hain ki कोई भी इवेंट में पार्ट लेने के लिए कोई टिकट्स लेने पड़ते हैं इट्स एन एब्सोल्युटली फ्री फैमिली इवेंट एंड हर एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए है एंड यू कैन मेक अ बिग डे आउट ऑफ इट
0: तो सोफिया जी यू आर इनडायरेक्टली टेलिंग मी कि माता रानी किसी ना किसी बहाने से उस दिन जो पेरेंट्स जिनके पास बच्चे हैं उनके बेबी सीटर का पैसा बचा देगी
4: एकदम
0: मैंने नहीं बोला
4: उस दिन आपको बेबी सीटर की चिंता नहीं करनी
0: पड़ेगी ना ओके आई एम गोइंग टू यू आप बहुत ही अच्छा लगता है जब आप अपने ट्रेडिशनल लैंग्वेज में यू टॉक इन दैट टेल अस हाउ like how significant is this celebration to you and how do you associate yourself with it when you are there like I'm pretty sure this is not the first time you are seeing it so if you are comparing it with jab apne india mein when you must have seen it in india now the celebration here it's like what drives you there kyunki aapne bola tha nahi pehli baar yahan par aap kar rahe ho so what drove you that I want to be part of this team
5: ami bangladesh theke eshechi ar bangladeshe amra eta khubi মানে বড় আকারে এটা আমরা উদযাপন করতাম তো সেখানে আমরা প্রতিদিন এই পুজোর সাত দিন আমরা সবাই বাইরে যেতাম আর মানে বাংলাদেশের ওই জায়গাটা আর এখানকার পুজোর সিস্টেমটা পুরোটাই আলাদা তো এখানে আমরা এটা যতটা কাছ থেকে উদযাপন করি তো বাংলাদেশে এতটা কাছ থেকে আমরা কখনো করিনি তো এর জন্য আমার এই জায়গার পূজাটা খুবই ভালো লাগে আই এম রিয়েলি এনজয় হিয়ার মোর দ্যান বাংলাদেশ সো এখানকার পূজা আর বাংলাদেশের পূজা অনেকটাই আলাদা তো আমি সবাইকে অনুরোধ করব সবাই যদি এখানকার পূজায় অ্যাক্টিভ হয় সবাই আমাদের সাথে আসে এবং আমাদের পূজায় জয়েন হয়ে কিছু করার চেষ্টা করে বা দেখে উদযাপন করে তো সবাই অনেক ভালোভাবে ফিল করবে
3: जो आपने बोला कि इंडिया से ज्यादा सेलिब्रेट करने का मजा यहाँ पे आता है एंड हमें ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हैं चीजों में क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं पर यहाँ जिस तरह सेलिब्रेट करते हैं हमें लगता है कोई अनदर लेवल पे ही हम सेलिब्रेट करते हैं
0: एक बार हम लोग का नेम इट बट आई आस्क समबडी फ्रॉम फिजी की यू नो इंडिया फिजी इंडिया भी जाकर कि व्हाट्स द डिफरेंस यहाँ सेलिब्रेशन में लेडीज आप लोगों को क्या ज्यादा पसंद है एंड दिस इज द ऑनेस्ट रिप्लाई टू मी दैट शी सेड दैट व्हेन वी आर इन फिजी वी लव ड्रेसिंग अप We love putting all our, you know, makeup. क्योंकि माता रानी भी तो सच समझ के आती थी ना पर फिजी में होते इंडिया में होते ना हीट इसके कारण We used to wear पर यहाँ पर no problem. Do you ladies agree?
4: Yes, absolutely.
0: Do you agree? देव जी आप भी आ जाइए सामने आपसे भी बात करते हैं आप इतने हीरो बनकर आए हो तो आपसे कैसे हम बात

0: नहीं कर सकते हैं।
1: थैंक यू।
0: आप
1: तो मैं
0: सालों से ये काम कर रहे हैं।
1: जी जी हाँ, जी जी
0: एंड एंड टेल अस व्हाई
1: बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। तो इसको जवाब देने के लिए मैं अपने ग्रुप के बारे में कुछ बोलता हूँ। हमारे ग्रुप का नाम है बंगालियाना मल्टीकल्चरल क्राइस्टचर्च। तो कई साल पहले जब हमने पहली बार इसकी शुरुआत की थी तो सिर्फ हाथ में इनके कुछ ही लोग थे और हमने सोचा था ऐसा करते हैं, क्या करें, घर के पीछे में थोड़ी सी जगह है वहाँ करते हैं। फिर हमने सोचा लेट्स टेक इट आउट टू द कम्युनिटी ताकि वी कैन शो व्हाट वी डू बैक इन इंडिया, अ टेस्ट ऑफ बंगाल टू द इन मल्टी कल्चरल एस्पेक्ट। तो दैट वॉज आवर आइडिया। अभी हमारे यहाँ पे सबके घर में जो बच्चे हैं विच इज़ द सेकेंड जनरेशन इमिग्रेंट टू न्यूजीलैंड। सो जैसे हमने जो चीज़ हमने जो देख के बड़े हुए हैं, वी वॉन्टेड टू शो दिस टू द नेक्स्ट जनरेशन, नंबर वन, एंड नंबर लाइक आवर डॉटर एंड सन्स, एंड देन नंबर टू इज़ टू ऑल्सो इन बी इंक्लूसिव। कुछ चीज़ें हम न्यूजीलैंड में डिफरेंट लोगों से सीखे और कुछ हमारी चीज़ें भी यहाँ पे दिखाए, इट्स टू मेक इट अ यू नो एन एनवायरमेंट वेयर एवरी वन इज लिविंग टुगेदर। तो बेसिकली यही हमारा आइडिया है इस चीज़ को करने के पीछे।
0: सुभजीत माई ब्रदर, आप भी काफ़ी सालों से इस टीम के साथ हो और पिछले 2-3 सालों से हमें याद है जब हम पहली बार आए थे एंड जब भी हम आते हैं क्योंकि हम भी इस ग्रुप के लिए एक नए चेहरे थे, आप हमें बहुत ही आदर सरकार देते हो वहाँ पर जब हम आते हैं। तो आप इतने सालों से आप भी है और पिछले आई थिंक लास्ट ईयर आप किसी काम में बिजी थे तो थोड़े कम थे, पर इस साल मुझे लग रहा है कि वापस फुल फोर्स में आ गए। हर साल क्या क्या आपको वापस खींच कर लेकर आ जाता है?
2: देखिए इस साल हम लोगों के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेशल है क्योंकि हम लोग इस बार नया माँ दुर्गा का मूर्ति लड़ रहे हैं इंडिया से। तो अभी माँ दुर्गा हैज स्टार्टेड हर जर्नी फ्रॉम इंडिया ऑन अ शिप एंड शी इज़ अराइविंग मे बी इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। सो एवरी ईयर कोई डिफरेंट रीजन्स होता है थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व होने के लिए, बट द थिंग इज़ कि पूरा साल में यही टाइम हमको बहुत होम सिकनेस होता है, बहुत दुख लगता है कि क्यों आ गया यहाँ पे। अभी तो मतलब अभी हम लोग वी आर ऑल वेल सेटल्ड, अभी कभी कभी सोचना आता है कि व्हाई आर वी हियर, व्हाई आर वी इवन हियर। सो इसी टाइम पे वी फील रियली रियली सैड अबाउट यू नो नाउ वी शुड बी गोइंग बैक टू इंडिया। जैसे दिवाली में शायद बहुत सारे लोगों का ऐसे होम सिकनेस भी होता है, फॉर अस दुर्गा पूजा के टाइम हम लोग बहुत नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं। तो इसलिए वही और एक बात है कि पूजा जब आता है तब तो वो मान लीजिए 1-2 दिन में ख़त्म हो जाता है, बट दैट द एक्साइटमेंट ऑफ समथिंग कमिंग
0: आउट,
2: तो वही है कि 1-2 हफ्ता पहले वो जो एक्साइटमेंट होता है कि एक पूरा हम लोग का भी टीम बन गया है, ये लोग सभी मैंने पूरा पूजा का टीम में एकदम बहुत इन्वॉल्व है एवरी वन। तो वही है कि पूरा एवरीवन यू नो लाइक वी हैव टू प्लान एवरीथिंग, सो इसलिए ये बहुत एक्साइटिंग हो जाता है हम लोगों के लिए।
0: और काफ़ी लोग आते हैं जैसे आपने कहा है कि पूजा के बाद भी वो जो एक्साइटमेंट रहता है, क्योंकि जब से हम जुड़े हैं एज अ गेस्ट एज अ एमसीज हमें अपना वो अपनापन फील होता है और आप लोगों इतने अच्छे यहाँ पर आप टीम में बात करने वाले लोग हैं, फिर भी पिछले 2-3 सालों से वी हैव द प्रिविलेज ऑफ माता रानी का काम के लिए आ रहे हैं। वो हम मैं तो जी भी ऐसे ही देख कर कि माता रानी के कार के लिए जा रहे हैं। तो सुश्रुति जी आप पहले आप एक छोटा सा अपने जो खाना का वो उसको प्लग इन दे दीजिए प्लीज़ सो दैट पीपल कैन फॉलो यू ऑन दैट, क्योंकि इसके बाद मैं खाना के बारे में बात करने वाला हूँ।
3: तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है क्वालिटी हॉस्पो, मैं आई डू फूड ब्लॉगिंग, तो फॉलो मी
4: एंड हमसे पैसा खर्चा करवाते
0: हैं। वेरी गो, सो फॉलो दैट पेज। ओके जीबी जी, ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरी तरह आप खाने में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, पर आप आई वांट यू टू आस्क दिस क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पतिदेव को सबसे ज़्यादा पसंद है।
5: जी
0: आपके बाद
5: ये क्वेश्चन आपको समझ ही आ गया होगा। सुश्रुति जी आप खाने के बहुत शौकीन हैं और आप खाना खिलाने के भी बहुत शौकीन हैं, तो दुर्गा पूजा में बंगालियाना मल्टीकल्चरल दुर्गा पूजा में इस बार क्या प्रबंध है खाने का?
3: बहुत कुछ है, बहुत डिलीशियस चीज़ें हैं, आई विल नॉट रिवील अ लॉट,
5: ओके,
3: लेकिन जो भी होगा एवरीवन विल लव इट। तो बस भूखा मतलब एकदम अच्छे से आइए, पूरा फुल पूरा दिन प्रिपेयर करके आइए वहाँ पे रहने के लिए
5: जी।
3: क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, एंटरटेनमेंट है, हमारे पास दर्शन है,

0: जी
1: पूजा का दर्शन, माँ का दर्शन है, और अच्छा खाना भी है, बहुत
0: जी
1: ही अच्छा है. वी हैव द लिस्ट, बट आई विल नॉट
0: बट यू विल
1: रिवील.
0: नॉट
1: नो,
0: रिवील
1: आई विल नॉट रिवील
0: इट.
1: मच.
0: हम वेट कर रहे हैं कि आप कोई
1: इंडियन
0: क्लू,
1: वेजिटेरियन,
0: आप कोई क्लू देने वाले हो क्या? ऐसे हम वेट कर रहे हैं.
1: बंगाली इंडियन वेजिटेरियन.
0: क्या बात है, क्या बात है. अभी से मुंह में पानी आ रहा है वो बंगाली सुनकर. चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सुश्रुति जी आपने बताया कि काफी सारी चीजें होने वाली है. माँ दुर्गा के दर्शन तो होने ही होने वाले हैं, पर बच्चों के लिए काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ है, एडल्ट्स को एंगेज रखने के काफ़ी सारी चीज़ें हैं, खाना है, सब कुछ है. ये शुरू कब हो रहा है और ख़त्म कब हो रहा है?
1: जी, ये 11 बजे शुरू हो रहा है.
0: जी
1: 11 AM से पूजा स्टार्ट होगा. उसके बाद हमारा, जैसे ही पूजा खत्म होता है, पुष्पांजलि, फिर हमारा लंच है. फिर 12 बजे से हमारा, 12 o'clock से हमारा लंच है. उसके बाद शुरू होता है हमारा मल्टीकल्चरल परफॉर्मेंस. एंड द रीजन आई एम सेइंग मल्टीकल्चरल बिकॉज इट इज रियली मल्टीकल्चरल. ना ही सिर्फ इंडियन यू नो टैलेंट होगा, बहुत सारी जगह से टैलेंट होगा. सो यू शुड सी एंड देयर अमेजिंग. ऑब्वियसली थ्रू आउट द डे वी हैव किड्स एक्टिविटीज, और उसके बाद हमारे पास इवनिंग स्नैक्स भी है सो दैट पीपल डोंट गेट हंग्री एंड बोर्ड. उसके बाद हमारे पास शीदुर खेला है, जो कि इट्स अ साइट टू सी. जिनको नहीं पता है वो है, हम जब माँ चली जाती है तो हम माँ को वरण करते हैं विद सिंदूर, उन पे सिंदूर चढ़ाते हैं, और जो भी मैरिड वुमेन है वो एक दूसरे को सिंदूर चढ़ाते हैं. तो इट्स अ ब्यूटिफुल साइट टू सी. और उसके बाद हम ढाके नाच करेंगे, और बस यही है पूरा
0: वाह,
1: दिन का.
0: काफी काफी, आई एम ऑलरेडी एक्साइटेड. अच्छा पूजा जी, आई डोंट नो आपको ये इन्फॉर्मेशन अभी दिया है नहीं, बट आई एम गोना शूट एट यू एनीवे. अपार्ट फ्रॉम, जैसे आपने कहा है कि देर विल बी अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशंस, क्या वहाँ पर कुछ ट्रेड स्टॉल्स होने वाला है जहाँ पर लोग, यू नो, लोग को पसंद होता है मेहंदी लगाना एंड ऐसा कुछ,
1: साड़ी
0: साड़ी
1: खरीदना.
0: खरीदना ये सब?
1: As she have mentioned, like we will have the face painting and like many more, right?
0: रहेगा ऐसा?
1: So
0: ओ वाह,
1: I'll
0: दिस दैट
1: probably chip in about
0: जी
1: that.
0: जी
1: We will have lots of other things as well for people, ताकि लोग, you know, जैसे आपने बोला मेहंदी या फिर you know कुछ खरीदना चाहे तो, because we are also supporting the local businesses, we
0: जी
1: would give the platform to the local businesses to you know set up a stall there and लोग जा सकते हैं एंड देख सकते हैं कि उनको खरीदना है कि नहीं, यू नो दे कैन ट्राई. सो यस.
0: ओके, चलो काफ़ी हमने, आप लोग अपना समय निकाल कर आए हैं. वी आर ऑल्सो रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो वील गो क्विकली अराउंड द रूम सिंस माइक इज एट यू. योर बेस्ट एक्सपीरियंस ओवर द इयर्स जो आपको दुर्गा पूजा में कहीं पर भी, न्यूजीलैंड या इंडिया, जो आपको हमेशा याद रहेगा?
1: शिदूर खेला, आई वुड से आई जस्ट लव इट. वो जो
0: Did we get to
1: लाल,
0: experience it too?
1: हाँ, यू
0: Yeah.
1: शुड एक्सपीरियंस
0: I
1: इट दिस
0: know, I
1: ईयर
0: always miss it, but this year definitely
1: विद
0: कोई और
1: द
0: बुकिंग नहीं लेना
1: व्हाइट
0: है.
1: एंड रेड साड़ी एंड यू पुट दैट सिंदूर सब मैरिड वुमेन को. इट्स अ साइट टू सी, इट्स सो ब्यूटिफुल. एंड विद दैट ढाक का जो बीट होता है बैकग्राउंड में बजता
0: जी
1: है, इट्स अमेजिंग.
0: वाओ, थैंक यू थैंक यू. पूजा जी, आपका एक्सपीरियंस कुछ
1: द सेम वन?
0: सेम.
1: या ओवरऑल आई लव एवरीथिंग, बट दिस इज द मोस्ट, आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग दैट वी ऑल लव.
0: नाइस.
1: ये
0: सिंदूर खेला जो है, ये सिर्फ लेडीज करती हैं या?
1: जी, ये मैरिड वुमेन यूजली करते हैं
0: जी
1: क्योंकि उनके मांग में सिंदूर एक दूसरे को लगाते हैं. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हम लड़के भी गाल पे लगा सकते हैं, यू नो, ऐसा मतलब ऐसे होली टाइप थोड़ा खेल लिए.
0: जी जी कोई आप कृष्णा के गाल में लगा देना. सोफिया जी, आपसे चलते हैं. सिंदूर खेला, यस आई नो वो भी है, पर कुछ ऐसा और है जो आपको बहुत अच्छा लगता है?
2: ढाक मुझे बहुत अच्छा लगता है.
0: जी
2: सो वी हैव अ वेरी पॉपुलर ग्रुप दैट कम्स एंड दे एक्चुअली डू अ ढाक परफॉर्मेंस फॉर अस एंड एवरीवन, पीपल हु आर विजिटिंग, जो आकर के हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, गेस्ट, पूरी टीम, वी ऑल गेट टुगेदर और हम लोग सब कोई डांस करते हैं. एंड दैट्स वन ऑफ द हाइलाइट्स एज वेल.
0: यू डू परफॉर्म एट अदर इवेंट्स टू ना?
2: Yes, I do.
0: अच्छा, आप फिर आप डांस डांस के बात आई तो अभी तो हमारे पास एक और भी डांसर है. बाद में उनके बारे में बात करेंगे. चलिए मैम, आई मिस्ड योर नेम. अमन सिंह
3: मुक्ता.
0: मुक्ता, ओके मुक्ता, व्हाट अबाउट यू? समथिंग, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर द सेलिब्रेशन इज वेरी मच सेम इंडिया में, न्यूजीलैंड में, बांग्लादेश में, बट ऐसा समथिंग विच यू थिंक, ओ आई विश, you know, I could see it again, or you miss it, or you want to experience it this year?
3: I always like

0: like horses Sophia and Shishuti and Padmaji. This maybe all ladies are waiting for every year the Sidur Khela and Dhaker Tal, that performance.
1: Mm. Yeah.
0: So we all love for Sidur Khela. This is the most part of our puja. Like we enjoy a lot this Sidur Khela. So this is also for my same. Yeah. So what they say.
1: Oh, we look forward to it.
0: We onek enjoy kori the Sidur Khela ta aur Dhaker Taler nasta. So eta amader khubi bhalo lage.
2: Krishi, आपका फोन क्योंकि हमारे हाथ में था, आपको थोड़े पर्सनल मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें किसी लेडी ने आपको मैसेज किया है. सॉरी गाइस, थोड़ा सा पर्सनल चीजें भी बात हो जाए,
1: घर पे
2: आके बात करते हैं बाकी. बट किसी लेडी ने आपको मैसेज किया है कि आप बंगालियाना मल्टी कल्चरल के दुर्गा पूजा में नहीं जा सकते क्योंकि आपने उन्हें कहा है कि आप अभी भी सिंगल हो. तो घर पे आके बात करते हैं इस बारे में.
1: लोग ऐसे ऐसे मैसेज करते हैं.
3: आप तो जो मुझे सबसे अच्छा लगता है दुर्गा पूजा के बारे में, चाहे वो इंडिया में हो, यहाँ पे हो या बांग्लादेश में है, व्हाट आई लाइक अबाउट इट इज एवरीवन कमिंग टुगेदर, वर्किंग टुगेदर, हेल्पिंग अस. हमें अनलिमिटेड मैसेज मिलते हैं लोगों से कि वी वॉन्ट टू वॉलंटियर. सो यूजिंग योर प्लेटफॉर्म मैं आई वॉन्ट टू गेट बैक हियर. अगर If you want to volunteer and help us, we are always here. And thank you to all the supporters and sponsors who hame madad karte hain. They make this possible. So thank you very much.
1: Okay, before we go to Subhajit, Mukta, can you ask your son just to say, can all the kids come and take part too? Just that one line. Can everyone come and take part? No? Okay, it's okay. Subhajit, we have got two sons, so we know exactly.
4: हाँ, देखिए इस बार ऐसा सेट कि इस बार पूजा हम लोग का ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि माता जी का जो हस्बैंड है श्याम सुंदर प्रभु जी, ही लिव्स इन ऑकलैंड एंड ही इज कमिंग ऑल द वे फ्रॉम ऑकलैंड टू द पूजा फॉर अस. सो आवर पूजा विल स्टार्ट ऑन फ्राइडे. सो षष्ठी और सप्तमी का पूजा होगा, फ्राइडे को स्टार्ट होगा और हम लोग का जो नया मूर्ति आएगा तो हम लोग उसको माता को उन्मोचन करेंगे और फिर सैटरडे हम लोग का और भी बड़ा सेलिब्रेशन होगा. तो इसलिए इस बार हम लोग थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड है.
1: डिड वी मेंशन कि कहां से हो रहा है? वी मेंशन ना, ओके. वेयर इज इट हैपनिंग फ्रॉम?
5: सो इट्स हैपनिंग एट टेंपलटन कम्युनिटी सेंटर ऑन 17th ऑफ अक्टूबर, 11 बजे से 5 बजे तक, या फिर जितने देर भी आप रहना चाहते हो आप रह सकते हो हमारे साथ.
1: और बहुत सारे पार्किंग वहां पर है.
5: And so, there's lots of parking. That is very important thing to mention, I think.
1: Yes, don't worry about parking because हम वहाँ पे काफी events करते हैं, we know.
6: I feel Templeton हमारा second home.
1: we love that event.
3: I would just want to end कि Templeton को choose करना एक strategic decision था क्योंकि it's really well located. हाँ, Christchurch और इस तरफ सारे तरह से लोग आ सके. And for of course for unlimited parking.
1: Yes, I agree. Rolleston हो, फिर Holswell हो, it's a very well location with plenty parking. So thank you guys. आप लोगों का You know, I know कि आप काफ़ी बिजी हो, स्पेशली आप, फिर भी आप टाइम निकाल कर आएंगे. तो हम 17th के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी आपका आउटफिट आप दोनों का डांस एंड आपको पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम यू सेलिब्रेटिंग विद द टीम एंड यू आई मेक श्योर माई किड्स प्ले विथ यू. ओके, दैट डे, या ऑन द बाउंसी कासल, गुड बॉय. सो गाइज, ये हमारे साथ आज शामिल थे हमारे जो दुर्गा पूजा टीम जो आ रहे हैं. सो मेक श्योर अगर आप उस दिन कुछ नहीं कर रहे, मार्क इट ऑन योर डायरी राइट नाउ. जो लोग हमारे फेसबुक माध्यम से सुन रहे या इफ़ यू आर लिसनिंग टू अस ऑन द फ्रिक्वेंसी, चले द स्पेशल टीम के लिए वन ऑफ माई फेवरेट सिंगर श्रिया गोसाल, उनके आवाज में. यू लिस्निंग टू रेडियो केजे लोकल ऑन योर
2: प्लेन्स मीडिया 96.9.

0: Welcome back to Radio KJ Local. You're listening to us on Plains Media 96.9.
1: Yes, guys. Thank you जितने लोग हमारे साथ आज प्रोग्राम के दौरान जुड़े हुए थे, हमें आपका साथ बहुत ही अच्छा लगा. और इसके साथ साथ हमारे साथ आज जो टीम आए थे, इनको भी हम तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहते हैं फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड एनलाइटनिंग अस अबाउट योर अपकमिंग इवेंट. 17 अक्टूबर, याद रखिए, टेम्पलटन कम्युनिटी हॉल से हो रहा है. मार्क इट इन योर डायरी राइट नाउ. इन उस दिन आपको वहां पर आना है, हमारे साथ इस टीम के साथ मिलकर बहुत कुछ सेलिब्रेट करना है. दैट्स इट फॉर अनदर फ्राइडे. हम आपसे मिलेंगे संडे को. संडे तक जी जाने से पहले एक बार फिर चले हमारे जो नेमिंग स्पॉन्सर्स फॉर आवर फ्राइडे शो.
0: सो वंस अगेन द फ्राइडे शो ऑफ रेडियो केजे लोकल इज ब्रॉट टू यू बाय जग्गी भोपाल अरिस्टो रियल एस्टेट.
1: ओके गाइस, टेक केयर, हैव अ लवली लवली इवनिंग, हैव अ लवली रेस्ट ऑफ द वीकेंड. हम मिलेंगे आपको संडे को, तब तक के लिए ख्याल रखिए. दिस इज आरजे क्रिश साइनिंग ऑफ विद अ वेरी ब्यूटीफुल विद अ वेरी गॉर्जियस
0: आरजे जीबी. बाय.